वही पार्ट डेवलप होगा, और जिस पे मेहनत नहीं करेगा वो पार्ट डेवलप नहीं होगा। क्या मतलब? मसलन मेरे बच्चे को बुखार हो जाता है तो मैं परेशान होता हूँ या नहीं होता हूँ? काफ़ी परेशान होऊंगा। मुझे डर होता है कि भाई अगर इसको ये बुखार हो रहा है इससे इसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट रुक जाएगी, मसलन खुदा न करे ये फिज़िकली डेवलप नहीं हो सकेगा तो इसको 50 इयर्स 60 इयर्स ट्रबल होंगी, तो मैं फ़ौरन इसका इलाज कराऊंगा ताकि इसके लिए प्रॉब्लम ना आए। क्या मैंने इस तरह सोचा है कि मेरी भी एक रूह है, उसको भी डेवलप होना है? और जिस तरह एक इलनेस, एक बीमारी जिस्म के लिए नुकसानदेह है, तो मेरी रूह के लिए नुकसानदेह क्या चीज़ें? ये वो प्रैक्टिकल प्लान है जो हमारे सामने क्लियर होना चाहिए था, और जिसके लिए मैंने चंद दिन आपकी खिदमत में बार बार अर्ज़ किया कि अगर हमें वक्त के इमाम के हुजूर सुरखुरू होना है हमें इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। और जो जिस पे मेहनत करेगा, कुरान करीम फरमाता है वह अनलैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही मिलेगा जिसकी वो मेहनत करेगा। तो अब अगर फ़र्ज़ कीजिए 24 आवर्स के अंदर मैंने, इंशाअल्लाह ऐसा हो जाए, मैंने सारी अटेंशन इस बात के ऊपर रखी है कि मेरी रूह कैसी है, तो मेरी रूह डेवलप हो जाएगी। अच्छी बात यह है कि रूह की डेवलपमेंट में एक अच्छा पॉइंट यह है कि यह कभी ख़त्म नहीं होगी। खुदा न करे नाऊज़ु बिल्लाह ताला अगर ऐसा नहीं हुआ, मैंने अपने बच्चे के अंदर भी ये तो देखता रहा कि उसका वेट कितना है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ कितनी है, उसको लैंग्वेजेस आती हैं नहीं आती, मैथमेटिक्स आता है नहीं आता, ये तो मैंने देखा। खुदा न करे नाऊज़ु बिल्लाह ताला, ना उसके अंदर ना अपने अंदर मैंने ये नहीं देखा कि स्पिरिचुअली कैसा है, तो क्या होगा? खुदा न करे अगर ऐसा हुआ तो बॉडी डेवलप हो जाएगी लेकिन वो 50-60 साल के अंदर लॉस्ट है, उसने बाकी नहीं रहना है। और जिसने बाकी रहना है, मैंने उसके ऊपर नाऊज़ु बिल्लाह अगर अटेंशन नहीं दी तो मामला बहुत ख़राब होने वाला है। फिर क्या ख़राब हो जाएगा भाई? इसको मैं समझाने की खातिर, अर्ज़ करने की खातिर एक मिसाल दूंगा आपसे। दुरूद भेजेगा मोहम्मद आल मोहम्मद पर, इसको बहुत तेज़ी से करना पड़ेगा ताकि हम किसी तरह अपने टॉपिक को एक एंड तक ले जा सकें। इंशाअल्लाह, कोई वैसे कहता नहीं है लेकिन मैं पहले से ही कह देता हूँ, इंशाअल्लाह जब हम लोग मरेंगे तो मरने के फौरन बाद हम एक नए फेज़ में एंटर हो जाएंगे, उसको कहते हैं आलम मिसाल। और ये जो मैंने कहा ये जुमला भी अच्छा नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। नए फेज़ में एंटर नहीं होंगे, नए फेज़ हमारे सामने खुल जाएगा। एंटर तो हम हो चुके, वो तो हमारे साथ ही चल रहा है अभी भी। तो जैसे ही हम मरेंगे हमारी आंखें खुलेंगी, इमाम के बकौल हम सो रहे हैं, हम जाग जाएंगे और अचानक हम अपने आप को देखेंगे कि भाई ये जो हम समझ रहे थे कि हम बॉडी हैं, इसके पीछे एक और दुनिया चल रही थी। उस दुनिया का नाम क्या था? उस दुनिया का नाम था रूह। उसमें हमारी शक्ल कैसी होगी? यहाँ तो हमारी ये शक्ल है इंसान वाली। उसमें डिपेंड करेगा कि जो हमारी स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है उसके अंदर जो हैबिट्स हैं, उसके अंदर जो इमोशंस रहे हैं वो क्या रहे हैं। वो जितना स्ट्रांग थे पॉजिटिव में तो हमारी अपीयरेंस पॉजिटिव होती चली जाएगी। खुदा न करे नाऊज़ु बिल्लाह अगर वो नेगेटिव में स्ट्रांग थे तो हमारी अपीयरेंस उस नेगेटिव की तरफ जाएगी। मिसाल, खुदा न करे नाऊज़ु बिल्लाह मैं सुबह को उठा और सुबह को उठते ही मेरे जहन में सबसे पहली चीज़ ये आई कि फला आदमी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे उससे एक बदला लेना है। अच्छा, इस फीलिंग को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंतकाम। इसके पीछे मोहब्बत होती है या नफरत होती है? इसके पीछे एक नफरत होती है। ये जो स्टार्ट मैंने अपने इमोशंस में एक नेगेटिव इमोशन से लिया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस वक्त मेरी रूह के ऊपर एक ऐसी शेप आई हुई है जो नफरत की शेप है। थोड़ी देर और आगे बढ़ा, मेरे जहन में अचानक एक और बात आई, वो ये कि भाई मेरे पास पैसा कम है और आज मुझे पूरी तरीके से पैसा कमाना है, कुछ भी हो जाए, सही से या गलत से। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हिर्स और लालच, ग्रीड। इसकी भी क्या कोई स्पिरिचुअल पिक्चर है? यस, इसकी भी एक स्पिरिचुअल पिक्चर है, वो भी मेरी रूह पर।

पर है, वो भी आपकी रूह पर है। अब नेगेटिव मिसालें सारी ना दूं, थोड़ी देर गुजरी, अचानक मुझे याद आया कि भाई ये सब तो बाद में होगा, मुझे अल्लाह की बंदगी करनी है, मुझे नमाज भी तो पढ़नी है। तो मैं खड़ा हुआ और मैंने नमाज पढ़ना शुरू की और खुदावंद मुताल से कहा, खुदा बड़ाई तेरे लिए है, अल्लाह अकबर। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बंदगी। इस बंदगी के पीछे अगर इसने लफ्ज़ के पीछे सोचा था तो इसको हम्बलनेस कहते हैं। हम्बलनेस की भी कोई स्पिरिचुअल पिक्चर है? यस, इसकी भी स्पिरिचुअल पिक्चर है, वो बहुत पॉजिटिव है। अब सिर्फ एक बात देखिएगा, 24 आवर्स के अंदर हमारे इमोशंस पॉजिटिव हैं ज़्यादा या नेगेटिव हैं? जो हमारे इमोशंस हैं वही हमारी स्पिरिचुअल पिक्चर है। अभी हमें इतना टैलेंट नहीं है कि हम अपनी स्पिरिचुअल पिक्चर को देखने के है क्या। बहुत सारे लोगों को अगर नज़र आए तो शायद हार्ट अटैक होके मर जाएंगे, बहुत सारे लोग खुशी से मर जाएंगे, बहुत सारे लोग हम से मर जाएंगे। कोई खुशी से मर जाएगा कि मैं इतना अच्छा हो गया हूँ तो सोचेगा फिर दुनिया में रहने का फ़ायदा क्या, चलो बस यहाँ से मामला ख़त्म करें। और कोई गम से मर सकता है कि भाई खुदा ने करे ये मेरे साथ क्या बला आ गई, मैंने क्या कर दिया, अब तो मैं इतनी उम्र भी गुजर गई मेरी। तो खुदा ने हमें नहीं दिखाया, लेकिन है या नहीं है? 100% है। अब हम क्या करें? इन इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करें। कल तक बात यहाँ पर आई थी कि भाई एक कुवे गज़बिया है, एक कुवे शाहविया है, एक कुवे वहमिया है, इन सब के इमोशंस आते हैं। उन इमोशंस के ऊपर मुझे और आपको, उन जज्बात के ऊपर हमें और आपको कंट्रोल करना होगा ताकि हम एक पॉजिटिव जगह तक पहुँचें। और उस पॉजिटिव से क्या होगा? हमारी स्पिरिचुअल वैल्यू डिफाइन होगी, हमारी स्पिरिचुअल वैल्यू डिफाइन होगी। अब कल के लिए अगर आप या आज रात इसके ऊपर थोड़ा सा वक्त निकाल सकें, तो मैंने आपकी खिदमत में पहले भी कहा था, दोबारा इसको जल्दी से रिपीट करता हूँ और इसमें एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, मौला ने नहजुल बलागा में एक पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इसरार किया और रिवायात के अंदर मुसलसल आता रहता है। वो क्या पॉइंट है? वो पॉइंट है अक्सरु ज़िक्रल मौत, मौत का जिक्र कसरत से करो। फिर एक लेटर है मुफ्ती जाफर हुसैन साहब आला मकामों, इन्होंने जो उर्दू में ट्रांसलेशन किया था नहजुल बलागा का, इसकी सीक्वेंस में लेटर नंबर बनता है 69। ये लेटर इमाम ने अपने एक सहाबी थे जिनका ताल्लुक यमन से था, उनको लिखा था। उनका नाम था हारिस हमदानी, हारिस हमदानी। हारिस हमदानी के नाम से 2-3 वाक़यात और 2-3 हदीसें मौला अमीर मोमिनीन की बहुत मशहूर हैं। हारिस हमदानी का नाम इस मामले में उरफा में लिया जाता है। तो इमाम ने हारिस हमदानी को एक लेटर लिखा और उस लेटर के एब्स्ट्रैक्ट्स इस ट्रांसलेशन के अंदर मौजूद हैं जो सैयद रज़ी ने नहजुल बलागा कंपाइल किया उसके अंदर हैं, लेकिन पूरा लेटर नहीं है बहरहाल वहाँ पे। लेकिन बहरहाल जो कुछ है उसके अंदर ये जुमले मौजूद हैं, अक्सरु ज़िक्रल मौत व मा बादल मौत, मौत का जिक्र कसरत से करो और जो कुछ मौत के बाद होगा उसका जिक्र भी कसरत से करो। कि मौत के बाद क्या होने वाला है, ये वो पार्ट है जो उर्दू की मैं मजलिसें पढ़ता रहता हूं और उर्दू बोलने वाले इंग्लिश बोलने वाले लोगों से मिलता रहता हूं। तो मैं आपके सामने गारंटी से एक बात कहता हूं, हमें शायद इस्लाम की चीजों में से बहुत कुछ पता हो, लेकिन पता नहीं क्यों अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि हमने मा बादल मौत को स्टडी नहीं किया। ये मिसिंग पार्ट है हमारा। तो हमने बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने इसको स्टडी किया हो कि बरज़ख क्या है, बरज़ख में क्या होने वाला, बरज़ख की शेप्स क्या हैं। ये जो मैंने बुक आपको रिकमेंड की इसको ज़रूर देखिएगा, उरूज सआदा, उरूज सआदा किताब, इसको ज़रूर देखिएगा। इमाम ने फरमाया अक्सरु ज़िक्रल मौत वमा बादल मौत, तो इंसान बादल मौत के लिए सोचे कि भाई मैंने बिलाखिर ज़िंदगी गुजारनी है, मैं ज़िंदा रहूँगा, किस शेप में ज़िंदा रहूँगा डिपेंड किस पे करेगा, आपके जज्बात के ऊपर। अच्छा, ये जज्बात ऐसे नहीं कि ये फ्लोटिंग है बस ऐसे ही आते हैं और चले जाते हैं, नहीं, इन जज्बात के नीचे एक पर्सनैलिटी है। आप जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल चेंज करें। और पर्सनालिटी कब चेंज होती है? इस बिलीफ के ऊपर चेंज होती है कि

क्या है? तो सही कहां से शुरू होगा? सबसे पहले इससे शुरू होगा, आप अपना परसेप्शन सही करो, लाइफ क्या है, अचीवमेंट क्या है। जब आपके अंदर ये मेरे अंदर सही होगा तो फिर मैं अपनी पर्सनैलिटी में इमोशंस को अपने कंट्रोल करूंगा। एक मिसाल दी थी मैंने आपसे, आपकी खिदमत में शायद कल या परसों, हजरत अबू जर की, कि अगर कोई उनके पास लेकर आया और कहा कि मैं चाहता हूं तुम्हारा नुकसान कम हो, उन्होंने कहा नहीं, इसका मतलब है तुम सही आदमी नहीं हो, मुझे कहीं और पहुंचना। आप और मैं अपने अंदर इस बात को मुसलसल पूछते रहे, हमारी कामयाबी क्या है, अचीवमेंट क्या है, और जितनी वो अचीवमेंट जिनका ताल्लुक इस दुनिया से हो और उसने कब्र में नहीं जाना है, उसको यहीं छोड़ देना, इसने ज्यादा साथ नहीं रहना है। अपने ऊपर रख के अर्ज करता हूं, मसलन अगर कोई मुझसे कहे भाई तुम्हारी अचीवमेंट क्या है, और मैं कहूं मेरी अचीवमेंट ये है कि मैंने 12 साल कौम में पढ़ा है, सिर्फ पढ़ना अचीवमेंट है या कैरेक्टर का चेंज होना अचीवमेंट है? पढ़ना कोई अचीवमेंट नहीं है, ये यहीं रह जाएगा। इस पढ़ने ने मेरे कैरेक्टर के ऊपर क्या असर डाला? कैरेक्टर वो जो लोगों के सामने है या वो जो छुपा हुआ है? वो जो छुपा हुआ है, वो जो सामने है वो तो खत्म हो जाएगा। तो मेरी अचीवमेंट क्या है? मेरी अचीवमेंट मेरी वो कैरेक्टर है जो इन तमाम चीजों के नीचे छुपा हुआ है, वो किसी को नहीं पता है। आपकी सारी अचीवमेंट भी यही है। तो मिसाल के तौर पर मैंने फना डिग्री ली, मैंने फना चीजें कंस्ट्रक्ट की, मैंने फना फना इंस्टीट्यूट्स बनाए, ये अचीवमेंट्स नहीं है। जब तक कैरेक्टर के ऊपर ना पहुंचे बात, अचीवमेंट नहीं है, ये सब बाहर है। अंदर क्या है, ये अचीवमेंट है। एक मिसाल और दूंगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, बिल्कुल नट शेल में। मैं चाह रहा हूँ कि चूंकि हम आखिरी दिनों की तरफ जा रहे हैं, कल फिर इस सिलसिले की शबे चहलुम की मजलिस होगी, तो हम बिल्कुल एंड पर हैं, बिल्कुल 2+2=4 करना चाह रहा हूँ, ताकि हमें ये समझ में आए कि हमें करना क्या है। कल मैं किसी से अर्ज़ कर रहा था कि बयान करते हैं, कहते हैं वो जो अखलाक सिखाने की कोशिश करें, हम अखलाक सिखाने वाले हैं नहीं, लेकिन अगर कोई अखलाक सिखाने की कोशिश करे तो प्रिस्क्रिप्शंस लिख के ना दे। सिर्फ ये डॉक्टर्स क्या करते हैं, प्रिस्क्रिप्शंस लिख के देते हैं, उसके बाद वो कहते हैं ये ले लो, फार्मेसी पे जाओ, मेडिसिन खरीदो, खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो अखलाक सिखाने वाला होता है वो भी क्या करे, प्रिस्क्रिप्शंस लिख लिख के देता रहे, तो कहते हैं नहीं वो ये ना करे, वो मेडिसिन ले और मरीज के मुंह में डाल के आए, उसके मुंह में डाल के आए। अगर वो इससे कम पर आता है, इसका मतलब है उसने अखलाक नहीं सिखाया। हम लोग अखलाक सिखाने वाले नहीं है, हम लोग अखलाक बताने वाले। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मेरे जैसे आदमी क्या करे, एंड तक बता दे, कम से कम एंड तक ले जाए और बता के आए कि देखो क्या करना है। तो अब क्या करना है, आपने जितना भी इंट्रैक्शन है आपका लोगों के साथ, इसके अंदर चेक करें पॉजिटिव इमोशंस कितने हैं। जितना भी इंट्रैक्शन है इंसानों के साथ, उसके अंदर चेक करें अल्लाह की सिफत कौन सी काम में आई है, यहां पे कौन सी सिफत काम में आई है। मिसाल के तौर पर ये मिसाल अच्छी रहेगी, एक दोस्त ने मुझे सुनाया, बहुत पहले मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे सुनाया, कहने लगे कि मेरी वालदा बीमार थी, मैं उनको गाड़ी में लेके जा रहा था, सख्त गर्मी का वक्त था, यहाँ मेरे ख्याल में इतनी गर्मी पड़ती भी नहीं है, जिस शहर की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ 40 से ऊपर जाता है डिग्री टेम्परेचर। तो कहने लगे सख्त गर्मी थी, मेरी वालदा बीमार थी और मैं उनको गाड़ी में लेके जा रहा था और वो मुसलसल कुछ दुआएँ पड़ रही थी। तो कहने लगे कि मैं समझ गया कि ये चूंकि इनकी तबीयत ख़राब है, ये अपनी बेहतरी के लिए दुआ पढ़ रही होंगी। तो कहने लगे कि मैंने उनका दिल रखने के लिए पूछा कि आप क्या पढ़ रही हैं, तो उन्होंने कहा मैं दुआएं दे रही हूँ। तो पहली बात मैंने पहले भी कही थी, हम लोग दुआएं पढ़ते हैं, दुआएं मांगते नहीं हैं, और दूसरों को दुआएं देना हो तो खैर पता नहीं हम शायद पीछे रह गया। अपनी दुआओं में देखिएगा दूसरों को कितनी दी हैं, अपने लिए ज़्यादा रखी हैं, दूसरों को दी हैं। बहर उन्होंने कहा मैं दुआएं दे रही हूँ, तो उन्होंने कहा आप दुआएं दे रही हैं, किसको दुआएं दे रही हैं? पॉइंट यहाँ पर है, उन्होंने कहा बेटा देखो हम तो गाड़ी में जा रहे हैं ना, हमारी गाड़ी में एसी चल रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी ठंडी हो रही है, हमें गर्मी भी नहीं लग रही,

ये बाहर रोड पे देखो, बस स्टॉप पे लोग खड़े हैं, ये गर्मी खा रहे हैं, बस का इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ी देर में बस आएगी, शायद बस भरी भी होगी, इनको जगह भी नहीं मिलेगी, जगह मिल भी गई तो बेचारे खड़े खड़े जाएंगे, गर्मी खाएंगे, फिर जहाँ पहुँचेंगे इनकी थक चुके होंगे ये लोग। तो कहने की मैं इनके लिए दुआ कर रही हूँ कि खुदा उन्हें आसानी से घर तक पहुँचा दे। ये इनके रिश्तेदार हैं सारे जो बाहर खड़े हैं? नहीं, अजनबी हैं। क्या खुदा हमसे चाहता है कि हम अजनबी के लिए भी फीलिंग रखें अपने अंदर? हाँ, खुदा चाहता है हम जानवरों के लिए भी फीलिंग रखें, खुदा हमसे ये चाहता है। तो मसलन अगर मैं जिंदगी गुजारता रहूं अपने सराउंडिंग में इंसानों के ऊपर मैं तवज्जो ना दे सकूं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरे अंदर कोई कमी है, इसका मतलब मेरे अंदर कोई कमी है। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं, हम में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर ट्रैप हो गए, ट्रैप हो गए। ना उनको यह पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, ना उन्हें यह पता है सराउंडिंग में क्या हो रहा है। वो अपनी लाइफ और अपनी अचीवमेंट के अंदर इतने बिजी हो गए हैं कि खुदा की सिफत रहम उनके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है। हमें इस बैरियर को तोड़ना है। अगर खुदा ना करे, नाउज़ बिल्ला, हमने बैरियर नहीं तोड़ा तो क्या होगा? बदकिस्मती से हम खुदा की सिफतों से बहुत दूर रह जाएंगे। और ये वो काम है जो हमें कर लेना चाहिए। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? आप अपनी ज़िंदगी में देखिए, सबसे पहले ये सोचना शुरू करें कि खुदा के सिफत को लेने के लिए आप अपनी ज़िंदगी में क्या तब्दीली ला सकते हैं। मतलब कुछ इंसानों के ऊपर अपने रहम को बढ़ा सकते हैं क्या? कुछ नहीं करें तो क्या करें? मैं कहता हूं कुछ ना करें ना, दुआएं दूसरों को दे दिया करें। इसकी एक मिसाल अर्ज करता हूं। किसी को मैंने कहा कि भाई इंसानों के काम आओ। उसने कहा मौलाना मेरे पास कुछ नहीं है मैं किसी के काम आ सकूं। तो वो समझ रहा था कि मैं कह रहा हूं पैसे से काम आओ। तो कहने लगा मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं किसी के काम आऊं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई तुम कम से कम ये कर सकते हो कि कहीं खामोश बैठकर लोगों के लिए दुआ कर लिया करो, ये कर सकते हो तुम। तो आप भी यही करना शुरू कर लो। कम से कम इतना कर लो, जिन लोगों को मजलूम समझ रहे हो उनके लिए दुआएं देते रहे, ताकि हमारे दिलों में खुदावंद मुताल इंसानियत के लिए एक जज्बा क्रिएट करे, और वो जज्बा हमें स्पिरिचुअली डेवलप करे और हम खुदा के नज़दीक आ सकें। एक स्टेप और अर्ज करूँगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह मदद करेगा इंशाअल्लाह। अपने आप से एक और सवाल पूछें, मैं भी पूछूंगा आप भी पूछें, हम खुदा के साथ अकेले में बात कितनी देर करते हैं? इसको पिक कर। अच्छा, मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ आपके सामने मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो बिल्कुल कोर इशू है उसे टच करूँ, ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। कोर इशू एक मैंने अर्ज़ कर दिया, हम इंसानों के मामले में बेरहम नहीं हो सकते। अगर हम इंसानों के मामले में बेरहम हैं, इसका मतलब है हम खुदा से दूर हैं, हम खुदा के नज़दीक नहीं हैं। दूसरी बात, क्या हम अपने अकेले टाइम में खुदा को याद करके खुशी महसूस कर रहे हैं या नहीं? हमारा प्राइम टाइम किसी और काम के लिए है, साइड में हम खुदा को भी चलते फिरते याद कर लेते हैं। कौन सी पोजीशन है? अगर ऐसा है कि मेरी लाइफ का प्राइम टाइम खुदा के लिए है, अपनी तन्हाई में खुदा को याद करके मुझे खुशी होती है, इसका मतलब है मेरा खुदा से एक कनेक्शन है, मेरा खुदा से, ये बहुत बड़ा एसेट है, ये बहुत बड़ा एसेट है। तो मिसाल के तौर पर कोई मुझसे कहे भाई मैं शुरू करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? तो मैं उससे कहूँगा कि देखो, हर रोज़ 24 घंटे के अंदर, प्रैक्टिकल पॉइंट, हर रोज़ 24 घंटे के अंदर कम से कम चंद मिनट्स ऐसे निकालो जिसमें तुम पूरी अटेंशन के साथ सिर्फ खुदा के सामने होने को सोचो मैं खुदा के सामने हूँ। और इस दौरान में एक सिंपल ट्रिक है, जिस जबान में आपको आसान लगे उस जबान में खुदा से बात करना शुरू कर दें। लिटरली खुदा से बात करें, कलाम करें खुदा से। मसलन क्या कलाम करें? मुमकिन है कोई एक मिनट के लिए करे, कोई मुमकिन है दो मिनट के लिए, कोई मुमकिन है आधे घंटे के लिए करे, लेकिन मैं आपको गारंटी से अर्ज कर रहा हूं, बार बार मुझे बताना पड़ता है कि इतने साल हो गए मुझे तालिबे इल्म बने हुए, तो मैं अपनी बात में वेटेज बढ़ाने के

ये सब बोलता हूं, मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगर कोई शख्स इस काम को करे, उसकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हफ्तों में पता नहीं कहां से कहां पहुंच सकती है। सिंपल काम क्या करे, अकेला वक्त निकाले और अल्लाह से अपनी आम जबान के अंदर गुफ्तगू करे, कलाम करे। तो मसलन वो क्या कैसे करे, मसलन अगर मैं किसी इंसान से मिलता हूं तो क्या कहता हूं, इंसानों से मिलता हूं तो मसलन पूछता हूं तुम्हारे हाल अहवाल क्या है, ज़ाहिर मैंने खुदा से ये नहीं कहना, तो मैं खुदा से क्या कहूं, मैं खुदा से कहूं खुदा है मैं तेरा बंदा हूं, मैं क्या हासिल करना चाहता हूं। कुछ चीजों को एक्सेप्ट कर ले, मैं तेरा बंदा हूं खुदा, लेकिन ये चीज मेरे अंदर अच्छी नहीं है,

बिल्कुल ब्लंटली आपके सामने एक बात कहती। ये क्यों कहा? ऐसा ना हो कि मैं 8 दिन आपके सामने एक चीज कुक करता रहूं, बनाता रहूं बनाता रहूं, और उसके बाद उसको बगैर उसके हांडी खोले आपके सामने अपने घर ले जाऊं उसे, और कहूं कि भाई जो मैंने कहना था वो कह दिया। नहीं, मैं कहूंगा आपके सामने पूरा खोल के जाऊंगा कि भाई साहब ऐसा ना हो कि आप और मैं किसी धोखे में रह जाएं। अपने दिमाग को बिल्कुल खोल लें, इनके एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड से कम नहीं आएंगे ये। और ये जो हमें 1000 साल से ऊपर लग गया है, वो भी इसी वजह से लगा है कि जिस जगह वो हमें पहुंचाना चाह रहे थे उस जगह हम नहीं पहुंच पा रहे। अब आप अपने अंदर और मेरे अंदर चेक कर लें, भाई हमें क्या डेवलपमेंट चाहिए। स्टेप्स बनाए अपने लिए, एक एक करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। कोई शख्स ओवरनाइट अपने उन इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता जो 50 ईयर्स में डेवलप हुए होंगे, लेकिन ये कर सकता है कि कम से कम फर्स्ट स्टेप को अभी ले ले, फर्स्ट स्टेप को अभी ले ले, सिंसेरिटी के साथ, सदाकत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। और मैं बार बार अर्ज करता हूँ, और ये मीनिंगफुल अर्ज करता हूँ, ये मैं जाहिर के तौर पर अर्ज नहीं करता, कि ये जो कुछ सय्यदुश्शुहदा के फर्श पर खुदा हमें लेकर आया है, इसका मतलब है खुदा हमसे कुछ चाहता है। हम कितनी फैमिलीज को जानते हैं जिनके माँ बाप अजादार थे, अब उनके बच्चे असल बाहर जा चुके हैं, मामला खत्म कर दिया उन्होंने, अजादारी में नहीं आते। हम जानते हैं फैमिलीज को। ये कि खुदा तआला हमें अभी तक यहां पे ला रहा है और हम समझ रहे हैं कि हमें यहां पे रहना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खुदा हमसे उम्मीद करता है, खुदा चाहता है कि हम तब्दील करें अपने आप। और मैंने अर्ज किया कि ये जो आप और मैं सय्यदुश्शुहदा के गम में गिरिया करते हैं, ये बहुत बड़ा वसीला है जिसके जरिए से हम अपनी डेवलपमेंट को बहुत तेजी से कर सकते हैं। उस वक्त हमारे दिल नर्म होते हैं, सय्यदुश्शुहदा की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर होती है। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा। उस मिसबाहुल हुदा की मोहब्बत जब दिल में होती है और उस मोहब्बत के साथ खुदा से हम ये मांगें कि खुदाया हुसैन के सदक़े में हमें अच्छा बना दे, क्यों नहीं होगा? अगर उस मोहब्बत के साथ हम खुदा से कहेंगे, ये जो दुआएं हैं बड़ी खूबसूरत दुआएं हैं, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना फिद दुनिया ज़ियारत अल हुसैन, ओह वो फिल आखिरत शफाअत अल हुसैन, और जब दो ये काम इंसान कर लेता है तो फिर अहले बैत ने कहा, फिर हम तुम दूसरी तीसरी की दुआ करना, वो क्या? अल्लाहुम्मा हशुरना तहता लिवाइल हुसैन, खुदाया हमें आखरत में हुसैन के परचम के नीचे महशूर होना नसीब कर दे। ये किसको नसीब होने वाला ये सब? जो कुर्बानियां देते हैं, जो अहले बैत के रास्ते पे चलते हुए कुर्बानियां देते हैं। अजीजो, आप और मैं 40 से बहुत नज़दीक आ गए, सय्यदुश्शुहदा के चेहलों से बहुत नज़दीक हैं, और लाखों करोड़ों लोग पूरी दुनिया के अंदर इमाम हुसैन के गम के लिए तैयारियां कर रहे हैं। कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था मसाइब के अंदर कि ये जो मैं और आप यहां बैठे हुए हैं, इसमें इमाम सज्जाद की वो कुर्बानियां हैं जिनको हम जबान पे भी शायद ना ला सकें, और इन पूरी कुर्बानियों के पीछे एक अजीम शान किरदार, वो किरदार है जिसकी अजमत को सब कबूल कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी कुर्बानियों को सब कबूल कर रहे हैं। बड़ा नफीस मसाइब का एक जुमला था, अल्लामा नक़न साहब अल्लाह मकामो एक मौके के ऊपर इरशाद फरमाया, उन्होंने कहा कि बनी हाशिम के लिए शहादत फ़ख्र है, जवान मैदान जंग में जाए शहीद हो जाए, ये बनी हाशिम के लिए मामूल सा फ़ख्र था, लेकिन कुर्बानी की इंतहा क्या थी? कुर्बानी की इंतहा थी कि बीबी ज़ैनब बगैर चादर के इस खानदान का वतीरा क्या है, इस खानदान का सलीका क्या है,
اس خاندان کی عظمت کیا ہے عزیزو؟ اس خاندان کی عظمت اتنی ہے کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا مدینے کے اندر سوار ہونے لگیں تو گویا 18 جوان کھڑے ہو گئے اور کسی نے اعلان کیا کہ اے لوگوں نظروں کو جھکاؤ، سیدہ زینب سلام اللہ

आले हाथ शरीफ ला रही है, ये इस खानदान का भी खार है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सैयदुश्शुहदा की चाहने वाली वो अज़ीम शान खातून, अगर मैं चंद मसाइब को आपकी खिदमत में अर्ज करूं जो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने देखे, और किस तरह से सैयदुश्शुहदा ने बीबी के दिल को मजबूत किया। अजी तो एक रिवायत हमारे पास मौजूद है, बयान करते हैं, कहते हैं शब आशूर जब दुश्मन के लश्कर ने हमला करना शुरू किया तो बीबी परेशानी के आलम में अपने भाई के पास आई और कहा कि भैया दुश्मन का लश्कर बहुत नज़दीक आ रहा है। बीबी ने परेशानी के आलम में ये जुमलात अदा किए और ऐसा हुआ कि बीबी गश खाई और उसके बाद उस हवास से बेहोश हो गई, और उस मौके पर सैयद शहदा ने अपनी बहन को जगाया और एक दुआ दी और कहा ज़ैनब अब तुम्हारा दिल नहीं घबराएगा। अब तुम्हारा दिल नहीं घबराएगा। और अजीजो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि असर आशूर आई और ये बीबी तल्ला ज़ैनबिया पर तशरीफ फरमा है और भाई कत्लगाह के अंदर है, और अजीजो ये जुमला माफ करना, पुश्ते गर्दन से खंजर चलने वाला है और ये बहन मंजर देख रही है। अल्लाह ने बीबी ज़ैनब के दिल को मजबूत कर दिया इमाम हुसैन की दुआ से, और इतना मजबूत कर दिया कि बीबी काफले की सालार बन गई। अजीज़ो अगर मसाइब बयान करना है ना, माजरत करूँगा और एक और दो चार मसाइब आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, तो बस वो लम्हा, दूसरा लम्हा वो सोचना जब असर आशूर भी गुजर गई, खेमों को आग लग चुकी, अब जमीन पर कुछ लाशें पड़े हुए, घोड़ों को दौड़ाने की तैयारी हो रही है। एक कबीला सामने आया, उसने कहा हमारे कबीले का बंदा पामाल नहीं होगा, बचली कबीला चला गया। एक और कबीला आया, उसका लाशा भी चला गया, हबशियों के लाशे भी चले गए। अब बीबी ने अजीब मंजर देखा, जमीन पर सिर्फ फातिमा के बेटे का लाशा रह गया। अब बीबी ने हसरत से देखा और कहा भैया सबका कोई वारिस है और तेरा कोई वारिस नहीं, इस दुनिया में तेरा साथ देने वाला कोई नहीं। अल्लाह ने बीबी की निदा को सुना, करोड़ों लोगों के दिलों में हुसैन की मोहब्बत डाल दी। हाँ लेकिन आजीजो बीबी के मसाइब तो खत्म नहीं हुए हैं, बीबी के मसाइब चलते रहे। बस दो रिवायत आपकी खिदमत में और अर्ज करूंगा और कोशिश करूंगा कि हमारे और आपके दिल बीबी ज़ैनब को फुरसा दे सकें, हम इस काबिल हो जाएं बीबी ज़ैनब को फुरसा दें। कौन सा लम्हा है, 11 मुहर्रम का लम्हा है, बीबी का काफिला मक्तल के बराबर से गुजारा गया है, बीबी ने अपने आप को अमारी से गिराया है। अजी तो ये जुमला मैंने कितनी आसानी से कह दिया, इमाम ज़माना ने ज़ियारत नाहिया में लिखा है सलाम हो उन बीबियों पर जो बेखजावा अमारियों पर बिठाई गई, सलाम हो उन बीबियों पर जिन्होंने अपने आप को जमीन पर गिराया। बीबी ज़ैनब है, इनकी अजमत है, बीबी फौरन अपने भाई के लाशे पर गई है, अपने भाई के लाशे पर आई। अजी तो बस एक अजीब मामला है, जरा अपने दिल से पूछना, और हमारी बहनें बैठी हैं, जरा वो अपने दिल से पूछे, एक तरफ भाई का लाशा हो एक तरफ दो बच्चों का लाशा था, बीबी ज़ैनब किसके लाशे पर गई है, अल्लाह शाहिद है इमाम हुसैन के लाशे पर गई है, उनके लाशे पर नवा किया। अब एक और आखिरी रिवायत है, जिंदाने शाम में आजादी का उन्वान आ गया है, अब सारे सर वापस लाए गए हैं, सब सरों पे मातम हो रहा है और दो सर जवानों के ऐसे रखे हैं, इसमें कोई मातम करने वाला नहीं है। और बीबी आप पूछ रहे हैं अरे ये दो जवान कौन है, क्या इनकी मां नहीं है। बीबी ने पूरे वाकई करबला के अंदर सुबह आशूर से लेकर तमाम मराहिल तक औनो मोहम्मद को याद नहीं किया, सैयदुश्शुहदा को याद किया, सैयदुश्शुहदा पे गिरिया किया। अजीज़ो आखिरी जुमला मसाहिब का, बस एक मौका आया जब बीबी मदीना वापस आई